से दुखन के वेतना भव समुद्र सुख जनाव एक रामना परम शांति परम निधान